आयोजक दीदी बहनी मीडिया हाउस स्टार एटी इवेंट तथा पार्टी पैलेस वसुंधरा काठमांडू समय 2084 भदौ 20 गते शनिवार बिहान 11 बजे देखि अपराह 4 बजे सम्म संपर्क नंबर 9856 3001।

आयोजक दिदी बहिनी मीडिया हाउस स्टार यति इभेन्ट तथा पार्टी प्यालेस वसुन्धरा काठमाडौँ समय 2084 भदौ 20 गते शनिबार बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म सम्पर्क नम्बर 9576401।

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो।

0: आयोजक दिदी बहनी मीडिया हाउस स्टार यति इभेन्ट तथा पार्टी प्यालेस वसुन्धरा काठमाडौँ समय 2084 भदौ 20 गते शनिबार बिहान 11 बजेदेखि अपराह चार बजेसम्म सम्पर्क नम्बर 98573301।
1: रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज हामी सबैको साझा आवाज।

0: आयोजक दीदी बहनी मीडिया हाउस स्टार एटी इवेंट तथा पार्टी प्यालेस वसुंधरा काठमांडू समय 2084 भदौ 20 गते शनिवार बिहान 11 बजे देखि अपराह 4 बजे सम्म। संपर्क नंबर 98573001।
1: निकट मा दीदी बहिनी, विकट मा दीदी बहिनी, यो रेडियो दीदी बहिनी।

0: Patagonia.
1: Extreme energy drink.
2: रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज।

0: आयोजक दीदी बहनी मीडिया हाउस स्टार यति इभेन्ट तथा पार्टी प्यालेस वसुन्धरा काठमाडौँ समय 2084 भदौ 20 गते शनिबार बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म सम्पर्क नम्बर 98576401
1: निकटमा दिदी बहिनी विकटमा दिदी बहिनी यो रेडियो दिदी बहिनी 95.5

आयो स्वत दीदी बहनी मीडिया हाउस स्टार एटी इवेंट तथा पार्टी पैलेस वसुंधरा काठमांडू। समय 2084 भदौ 20 गते शनिवार बिहान 11 बजे देखि अपराह 4 बजे सम्म। संपर्क नंबर 9576 3001।

0: रेडियो थाहा संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास।
1: रेडियो थाहा संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
0: बीबीसी नेपाली सेवा।